मिठे निर्मल जल दी बख्शिश लई बेनती कर दे पातशाह कृपा करनी कारज रास करने सोना जल बख्श के कृतार्थ करना। स्वर्गवासी गुलाब सिंह।

प्रबल चांड का साक उभारा खाखट अपहरानत गाए अष्टमाल का सग संग लाए पुन आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत उठे तान कलोल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर।

भूत बन चार चित छौना सब दूता धारी पौन के हरि शुभ जंग जानियत है। त्रिण के भचैया धन लोभ के तजैया तो गौवन के जैया वृक भैया मानियत है। नभ के उडैया ताहे पंच की बटैया दे दब गुलाब डाल वृक ध्यान ठानियत है। जेते बड ज्ञानी तिन जानी पब खानी नाहे असन प्रपंच मन भूल अनियत है। भूम के बसैया ताहे भूजरी के जैया कहे नभ के उडैया तो चिरैया के बखानी है। फल के भचैया ताहे बांदरी के जैया कहे आदिस फिरैया ते तो हूज के पछानी है। जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के भचैया सो चकोर सब मानी है। सूरज सिवैया ताहे कौल की बढ़ाई दे चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कछ मछ तेंदुआ कहत

भयो भेड़ जो खसत शीस बृछन सो माटी को बछैया बोल पूछ लीज जो सो कामन अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सो नाचो ही करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन कर ही करत है एक पाय ठंड सदा बन में रहत वृक्ष फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है पाहन अनेक जुग एक ठोर बास करे काग और चीर देश देश विचरत है ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है जैसे एक स्वांगी कहूँ जो किया बरागी बने का बहू संन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ बोनहारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगावे बारी कहूँ दंडधारी हो लोक न भ्रमावई कामना दीन पर नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई पंच बार की दर पुकार पर शीत काल कुंचर उगदह अनेक दा पुकार ही कहा भय जो पे कल वत्र लियो कांसी बीज चीर चीर चोर

अपनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए तो जप पाए तो जाप देव भूतना सदीव तुही उच्चरत है। नभ के उड़त जब नारायण पाइयत अनर आकाश पंछी डोल बो करत है। आग में जरत गत राण की परत कर।

आग देखनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होय के फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक धूर दे अनेक धूर पूरत है, दूर के कनु का फिर दूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। तैसे विश्व रूप दे अभूत भूत प्रकट होय, ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। केते कछ मच केते उनको करत भच, केते अच वच हो सपच उड़ जाहेंगे। केते नभ बीज अच पच को करेंगे भच, के तक प्रताच हो बचाए खाए जाहेंगे। जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज जो तेज में अतेज जैसे तेज रिन, ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। कुकत फिरत केत रोवत मरत, केत जल में डुबत केत आग में जरत है। केत गंग वासी केत मति नामका निवासी, केत उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत केत भूम में गड़त, केत सुहावे चढ़त केत दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त केत जल में रहत, केत ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे, दानो बड़े बोध हारे, बोधक प्रबोध हारे, जापसी घास हारे, चंदन लगाए हारे, चोचार बोझ हारे, पाहन चढ़ाए हारे, लापसी गाह हारे, गोरन मनाए हारे, मड़ी मटली बहारे, भीतन लगाए हारे, छापसी गाय हारे, गंधर्व बजाए हारे, किन्नर साहब बच हारे, पंडित तप

देह दुखं गहूं औखदीरो के शोक सुखं गहूं देव विद्या गहूं दैत बानी गहूं जच्छ गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी सात की तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं होम की भुगत मैं भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जश विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं श्रेष्ठ के पृष्ठ के रिष्ट पन्नया कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं गोग की काव कथा कहानी कहूं अदर सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं क्षुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टा चार चित्रंग स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध सेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राजसा

अनुकूट भंडार दाता दुरंत सर्वंग प्रकार अनुभूत तेज अंश जिगाद करता सदैव हरता सनातासन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह केह नहीं ब्योत बान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नयक नेह केह नहीं चहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह केह नहीं पितृ मात जय नाम धाम नहीं बर्ग ब्याद जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रास वास नहीं देह नास जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगज जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल व्याल कट्यो न अंग अक्षय स्वरूप अखय अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेब जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन शीत घाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई ऊर्ध बाह देशन भ्रमंत कई ऊर्ध मध पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्रत उचरंत वेद कई कोग काव कथत कतेब कई अग्नहोत्र कई पवनहार कई कर्त कोट मृत को आहार कई कर्त साक पै पत्र भच्छ नहीं तदव देव होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अग्न

कई तीरथ तीरथ फरम सोहरम कई अगन होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदपतास पायतन पार। कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म कही सिमृत शास्त्र उचरत सो करम न्योली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मख को बखान। कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ बिरध चार कहूँ करत जच गंधर्व गान कहूँ धूप देव कहूँ वर्ग दान। कहूँ पितृ कर्म कहूँ वेद रीत कहूँ नृत नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार। कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्मत देश देश अनुदास कई जल निवास कई अग्न ताप कई जपत ऊर्ध लटकंत जाप। कई जपत जो कल्पं प्रजांत नहीं तदप तास पायतन अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदप दृष्ट देखे मुरार। बिन भगत सगत नहीं वर्त पान भो करत होमर जग दान बिन एक नाम एक चित्त लीन भोग।

जय राग न रंग न रेख रुखंग जय सोग न भोग न जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आद सरंग जय वंदत देव देव नरंग गण किन्नर जचे भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जम्पत वेद पुराण सब।

रंग है न मान है न मौद है न साक है न संक है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह गो कुमार है न ने है न गे है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है न दात है न मात है अख्याल खंड रूप है अछेद है अभेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न सोग है न भेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न साध है प्रया है पवित्र है पुनीत है प्रमाथ है न सीध है न सोच है न घ्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र के विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैख है न भेख है न दुई है न द्रोह है न काल है न बाल है सदीव दयाल रूप है अगंज है अभंज है भ्रम है अभूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत अभेघ है बलि रूप राग रंग है न द्वैख है न भेग है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिन्ह वर्ण है बेअंत है अनंत तेज जानी है अभूम अभिज है सदा।

नाथ धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्र न तंत्र जाको आदि पुरख अपार हस्त कीट बिखे बसे सब ठौर मैं निर्धार जात बात न तात जाको मंत्र मातन मित्र सर्व ठौर बिखे रमयो जय।

काज लेथले महे जपत जाप अमंड। श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार, आद देवा पार श्रीपत दुष्ट पुष्ट प्रहार। अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्वमान महेंद्र, वेद व्यास करे गई दिन कोट इंद्र उपेंद्र। जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार, वेद भेवना पावई शिव रुद्र ओमुख चार। कोट इंद्र उपेंद्र व्यास सनक सनत कुमार, गाय गाय थके सब गुण चक्रत भेमुख चार। आद अंत न मध जाको भूत भव भवान, सत द्वापर तृतीया कल युग छत्र काल प्रधान। ध्याय ध्याय थके महामन गाय गंधर्व पार, हार हार थके सबे नहीं पाइये दह पार।

दुर्जन दल दंडन असुर बिहंडन दुष्ट निकंदन आदि वृत्ते जचरासन मारण पतित उदारण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय हो शिव खासुर मर्दन रंभक बर्दन छत्र छिते आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप अते जंडासुर चंडन वुंड बिहंडन धूम्र बिधुंसन महक मथे दान व्रहारण नरक निवारण अधम उदाहरण ऊर्ध अधे जय जय हो से मैं खासुर मर्दन रंभक बर्दन आद वृते डावरू डवंगे बबर बवंगे भुजा फलंगे तेज वरंग लंगुड़िया फांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायध चमके भूखण दमके अति झमके फुंग फनंग जय जय हो सी मै खासुर मर्दन रंभक वर्दन दैत जिनंग चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खांडे अखंडन खून खिते दामनी दमंकन ध्वजा फलंकन फणी फंकारण जोध जिते सरधार विवरखन दुष्ट प्रकरखन पुष्ट प्रहरखन दुष्ट मथे जय जय हो सी मै खासुर मर्दन भूमा कासल ऊर्धे दामनी प्रहासन सुषम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन युद्ध प्रमाचरण हृदय नराजन धर्म वृते श्रोणंत अचिंती अनल विवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अघोघ निवारण दुष्ट प्रजारण सृष्ट उवारण शुद्ध मते फणियन फुंकारण बाघ बकारण सहस प्रहारण साध मते सहती सन्नाहन अश प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन भूमा आकाश पताल जलंग चाचर चमकारण चुरहारण धूम धुंकारण द्रप मथे दाढ़वी प्रदंते जोग जयंते मृजु मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन भरम विनाशन धनम धुजे घुंगुरु घमंकण शास्त्र झमंकण फणियर फुंकारण धर्म ध्वजे अष्टाट प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुध सन्नाहे अगमथा हे एक वृते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आदि कुमार गाथ वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आदि कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण पितल तले जय जय हो सी सब ठौर निवासन बाय पताल आकाशन रे संकटी निवारण धम उदाहरण तेज प्रकरखण तुंद तबे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अछे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तबत प्रतापन जबत जीवे जय जय हो सी सत्र प्रकरखण आद अनीर अगाध अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठा।

लोचन प्रतन विमोचन सोज विसोचन कौज कसे दाम निब्रहा से सुख सरना से शुभ्र सुभा से दुष्ट ग्रसे चंचला ब्रहंगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय हो सीमा खा सुर मर्दन आद नाद का दोर्धन घंट का विराजे रुण झुण बाजे भ्रम भाजे सुनत सुरंग को किल सुन लाजे किल विग भाजे सुख उभराजे मध उरंग दुर्जन दल दज्जे मंथन रिझे सफ़ह नभज्जे रोह रणंग जय जय हो सीमा खा सुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर प्रत्यय धूमराज विधंसन प्रलय प्रजुंसन जग

खतंगिया वह अभंगिया आद अनंगिया गाद गते ब्रलाज बिहंडन चचुर दंडन तेजुर चंडन आद ब्रते सुर नर प्रतिपारण पद दो धारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय हो सी मखा सु मर्दन विश्व विदुन संसिष्ट करे दामनी प्रकाशे उमतन नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकर खण सर्वर वर खण दुष्ट प्रतर खण बितल तले अष्टायत बाहन बोल निबाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आद अनाद अगाध वृते दुख दुख प्रवच्छन सेवक रक्षण संत प्रदक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना है दुष्ट प्रदा है अर्दल गाहे दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रमाने संत जमाने आद अंते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन साध प्रदक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्व गहिली ज्योत जतीली तुंद मते अष्टायद चमकण सस झमकण दामिन दमकण आद व्रते डुकडुकी दमंगे बाघ बपंके भुजा फरंके शुद्ध गते जय जय उसी में खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चिचरा सुन मारण नरक निवारण पद दोधारे एक घटे पापान विहंडन दुष्ट वचंडन खंडे अखंडन काल कट्टे चंद्रानन चारे नरक निवारे पद दोधारे मुंड मथे जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन धूम्र विधुंसन आद कथे रक्तासुर मर्दन चंड चक्र दंदान मर्दन बिडाल मदे सरदार विमुर खण दुर्जन धर खण अतुल अमर खण धरम दुजे धूमराज विधुंसन श्रोणत चुनसन शुंभ न पा

करुणा निधान कामल कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाथ जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ। जेह जात पात नहीं भेद भ्रम जेह रंग रूप नहीं एक धर्म जेह शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप विचल अपार। जानी न जाय जेह रूप रेख कहे बास दास कहे कौन भेग कहे नाम दास है कवन जात से शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात। करुणा निधान कारण स्वरूप जय जक्र चैन नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल। उर्धंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल युद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंछिज तेज अनभिज अताग। जल थल महीप बंतन दुरंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दी नान दोख दहता उदार। कई कोट इंद्र जह पान हार कई कोट रुद्र चुकिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जह नेत नेत।

पाछ वसु नगन नागन राध सर्व समय सबको व्रत बारे। पोखत है जल में थल में पल में गल के नहीं करम बिचारे। दीन दयाल दया निध दोखन देखत है पर देत नहारे। दाहत है दुख दोखन कादल दुजन के पल में दल डारे। खंड अखंड वचंड बहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभारे। पार न पाए सके बदमापत वेद कते व भेद उछारे। रोज ही राज बिलोकत राजक रूख रूहान की रोजी नटारे। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए। देव देव खपे अहंग वेवना वेव लख्यो भ्रम शिव ब्रह्माए। वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ नाए। पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यो किन श्री पदमावत पाए। आद अनंत अगाध द्वेक सो भूत भविक भवान अभय। अंत विहीन अनात्मा अदोख अछिद्र अछह। लोगन के करता हरता जल में थल में भरता प्रवह। दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्री पद्मापत एह। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय। देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त गेह अछह। जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दह। काहे को डोलत है तुमरी सुध सुंदर श्री पद्मापत लह। रोगंते और सोगंते जल जोगंते वो भांत बचावे। शत्रु अनेक जलावत खावत।

जच भुजंग सो दानव देवा फेव तुम्हें सब ही कर ध्याव भूम आकाश पताल रसातल जच भुजंग सब सिर न्याव पाय सके नहीं पार प्रभाहु को नेत ही नेत वेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ नावे नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हूँ मिल गायो वेद कतेव न वेद रखियो सब हार परे हर हाथ न आयो पाय सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनाद सनातन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन मै जय को मितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेव कुरान अभेद निपान सब बजहारे भेद न पाय सक्यो अन भेद मुखेद तह अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे आद अनाद अगाध अभेग अद्वेघ जप्यो तिन्हि गुलतारे तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे देश फिर कर भेष तबोधन के धरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बहु न्यास करे मुख कारे दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया छिद छत्र के धरैये छत्र धारियो के छलैया महासत्रन के साल हैं दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसान के देवैया हैं कटैया जय मजाल है युद्ध के जितैया और विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है पूर्वी न पार पाव हिंगुला हिमाल ध्याव गोर कर दे जी गुण गाव तेरे नाम है जोगी जोग साध पौन साधना कितेक बांधे अरब के अरबी अराध तेरे नाम है फरागे फिरंगी माने कंधारी कोरे सी जाने पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है मरहटा मंगेर तेरी मन सो तपस्या कर दृढ़ वै तिलंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है रोह के रोहले मंग देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले बाब पुंज को मलत है गोखा गुन गाव चिन व चीन के शीस न्याव तिपतिथि आये दुख देह के तलत है जिन्हें दोहे ध्यायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सुफलत है देव देव दान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साध दीन कहियत है पाई न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है हाथी की पुकार बल पाछे पहुंचत ताहे चिट्ठी की जंगार पहले ही सुनियत है कहते इंद्र द्वार कहते ब्रह्मा मुख चार कहते कृष्णावतार कहते राम कहियत है कहते ससुरासी कहते सूरज प्रकाशी कहते मुंडिया उदासी जो को द्वार दहियत है कहते महादीन कहते व्यास प्रवीण कहते कुमेर कुलीन कहते जच कहियत है करत है विचार पैन पूरन को पावे पार ताहित अपार निराधार लहियत है पूरा अवतार निराधार है न पारावार पाई न पार व अपार के बखानिये अद्वै अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी के मानिए जंत्र हूँ न जाद जा की बाब हूँ न मायता की पूर्ण ब्रह्मा की सोचा के अन मानिए तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानिए तेज हूँ को तर है के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है कामना की खान है के साधना की सान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रचक है गुणन को बहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रोध को अभूत है के अक्षय विनाशी है काम को कुनिंदा है के खूबी को दिहिंदा है गनीमन करिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूँ के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को भूगत है के वृद्धता की बासी है जोग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के भूत हूँ का घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है
जान को बचैया है, ईमान को दिवैया है, जमजाल को कटैया है, कामना को कर है, तेज को प्रचंड है, अखंडन को खंड है, मही बन को मंड है, केसरी है, ननर है, विश्व को भरण है, गया पदा को हरण है, सुख को करण है, तेज को प्रकाश है, पाई है न पार पार वार हों को पार, जग की जत विचार सो विचार को निवास है, हिंगुला हिमाल गावे हबसी हल पिदावे, पूर बिना पार पावे, असते अनास है, देवन को देव महादेव हूं के देव है, निरंजन अभेवन अद्वय अविनाशी है, अंजन विहीन है, निरंजन प्रवीण है, के सेवक अधीन है, कटैया जम जाल के, देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ, भूम के भुजैया है, मुहैया महाबाल के, राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ के जोग है, धरैया ध्रुव चाल के, कामना के कर है, के बुद्धता को हर है, के सिद्धता के साथी है, के काल है कुचाल के, छीर कैसी छीरा वध छाज कैसी छतरा नेर, छपा कर कैसी छव काल इंद्र के कूल के, हंसनी सी सिहा रूम हीरा सी हुसैन बाद, गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के, पारसी पलाऊगढ़ रूपा कैसी रामपुर, सोरासी सुरंगाबाद नीके रही झूल के, चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़, कीर दत्ती हरी रही मालती सी फूल के, फटक सी कैलाश कमाऊगढ़ कांसी बुरसी सासी सुरंगाबाद नीके सोहियत है, हिमासी हिमालय हर हार सी हलब्बा ने, रहंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है, चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चांद्रगीर, चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है, गंगा सम गंग धार बकान सी बिरंदावाद, कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है, फरासी फिरंगी फरासी के दुरंगी, मकरांद के बृदंगी तेरे गीत गाइयत है, भकरी कंधारी गोर गखरी गर्दाचारी, बौन के हारी तेरो नाम ध्याइयत है, पूरब पलाऊ काम रूप ओ कर्माऊ, सर्व ठौर में विराज जहाँ जहाँ जाइयत है, पूर्ण प्रतापी जंत्र मंत्र ते अतापी नाथ, कीरत तिहारी को न पार पाइयत है,

करे, दीनन की प्रतपाल करे, नित संत उबार गनी मन गारे, पशु परे नगनाग नरातक सर्व समय सब

सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के।

0: आ रही आवाज? वाहेगुरु वाहेगुरु। हेलो स्पाइडरमैन, शक्तिमान, कहाँ बाबा जी आते जो भी मैं 10 मिनट है तो पागल हुआ क्या? 9-10 को आ गए थे। आ रही ना आवाज क्लियर? अभी चेक कर ले ये कैमरे का, चेक कर लो अभी, अभी कर लो अभी, दिया साइड बैलेंस होने, चेक कर लो,
1: चालू करके रख दो इसको,
0: सेट करके रख लो, उधर के बाद में करने आता। हेलो, सेट कर रहा थे कभी, वो दूसरा कैमरा बाद में लगाएंगे उन्हें, ये कैमरा वो लगा करके करने आता है। ओके ले ले वाले
1: कर लिया था पहले
0: से। नहीं ना, आप कहाँ आ रहे हैं?
1: मैं करेक्ट
0: अब आ रहा, थोड़ा टोन आ रहा है देख लो अब। ठीक है, हाँ ये वायर वाला है, उधर वायरलेस लगा दो सामने, हाँ बाद में देखते रहे, अभी रख दे रहा हूँ डब्बे में, और ये बाद में चेक करके।

0: अजय तंवर साहब फोन लगाओ, आवाज आ रही तो जल्दी। हेलो, हाँ कर लो। हेलो, आ रही ना? राम सिंह हो जाए और क्या अपने। हाँ हाँ थोड़ा माता जी। कौन है?
1: Thank you.

पंडवा मनमा चित्वा चित्वनी उद्यम करो ठनीत हर कीर्तन का आहरो हर देहो नानक के मीत पावणी।

भगत जना का संग पाप गवावना, जन नानक सद बलहारा बल बल जावना, जन नानक सद बलहारा बल बल जावना। वाहिगुरु जी कीर्तन सोहेला सोहेला, राग गवड़ी दीप की महला पहला, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, जागर कीर्त आखिया करते का होए विचार, तिद कर गावो सोहेला सिवरहो सृजनहारो, तुम गावो मेरे निर्भव का सोहेला, हमारी जित सोहेला सदा सुख होए रहा, नित नित जेड़े संभालियन देखांगा देवनहार, तेरे दाना कीमत ना पवैत दाते कौन सुमार, संबत साहा लिखया मिल कर पावो तेला, देहो सजन आशीषड़िया ज्यो वैसा सियो मेल, कर कर एहो पामचा सदड़े नित पवन, सदना रस मरिया नानक से देह आवन। राग आसा महला पहला, छह घर छह गुर छह उपदेश, गुर गुर एको बेस नेक, बाबा जागर करते कीरत होए, सोगर राख वडाई तोयरा, विशेष सिया घड़िया पहरा, तिथि वारी माह होवा, सूरज एक उर्वत अनेक, नानक करते के वेस। राग तना श्री महला पहला, गगन मै थाल राव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो पावन चौरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति, पैसी आरती होए पौखंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत पेरी रा, सहस्तव नान नान नान तोह का, सहस मूरत नना एक तोही, सहस पद विमल नान एक पद गंध बिन, सहस्तव गंध

राग गावड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर पापरिया मिल साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लियो मंडल मंडाए कर साधु अंजलि पन वड्डा है कर दंडात पुन वड्डा।

एक ओहंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूरत लजुनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानको सी भी सच श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवसरा दुदाई दाया खेला सकल जगत चंगियाया।

जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का जुआस। इतना हुक्म संभाल इतना हुक्म करना सितना पाने कटड़े।

तुझ में है जो चली चंद्रावन कान कृष्ण जादन पे आपा जात को पीले आया वृंदावन मेरन किया कल में बदात्र पढ़वाना खुदाया लो पया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे त्रिकाणी अमन किया चार

हालिया दिल पर किस ज्ञान दिंदी आई ये निद्र जगत ने हालिया बसम छोट कुछ लगे टू बेसिम जारी आ सतगुरु है बोता।

चरी बगायन तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पुरे नाद ना पियाए वैसा पुड़ी रास कुड़ा पार कुड़ बोल करे आर श्रम करम का डरा दो नान पुड़ रे हा परपू मत्ते टिका तेड़ तो टिक खाई हाजरी जगत का साई नील बस्त्र पैर होए प्रवाण मलिस्तान ले पुजे पुरा आपा क्या ता कुट्टा बकरा खाना चौके पर किसे ना जाने देखे चौका कटिकार उपराए बैठे कुड़िया मत पिटे

खना पत्र पतन कनी सुत कन पहला द्वार काए नानक हंसा गुण लगे जन पूजा मोहला पहला सबो सुत परम जल के जाए जमन मना हुक्म पाने आवे जाए खाना अपना पुत्र आदि तुंड जग संभाए नानक जिन्हें गुरमुख बुझे आ तिन्ना सो तक नाए पवित्र सलाए।

मालिया जिन करो जिस जनन जिंदी आई ने नित्र जगत ने हल्या कसम छोट तुझ लगे डुब समझारे सदर में।

पहला सचा फर्स्ट बैठा सचा के रखिया कोई ना पिटियो जाए सचा को जीव लगा पड़ कहती जाए सचा किसो लगा दो अन्न देवता पानी देवता बसंतर देवता पंजवा पाया किरत ता हवा पाक पवित्र पापी सीवतन कड़िया थका पिया देते।